0: चलो जिमी राहुल आ गया एंट्री पॉइंट पर।
1: ए राहुल तो यहाँ नहीं है।
2: अरे वो भी मिल जाओगे यहाँ पर नहीं। दो मिनट बाद इसकी एंट्री होने वाली है यार, कहाँ है वो, जाकर ढूंढोगे प्लीज।
1: ओह गॉड मैं अभी आया। श्रुति श्रुति राहुल मिला क्या?
3: नहीं मिला।
4: मुझको हुई न खबर चोरी चोरी छुप छुप कर है।

0: You're absolutely correct there, Robert Rump. That's our very own Devendra Puran there with that Mukesh selection. As we put a wrap on our program for this Sunday's edition of Sunday Melodies, right here on 98.1 Hot FM. Nazim Hussain, thanking you for being with us on this Sunday morning. Thank you for all your comments and your questions and company for this morning's edition. This is a great opportunity to be sitting in for my good friend and brother Niaz, who I'm quite sure will be back with you next week. Until then, be careful and take care.
1: Kabhi kabhi mere dil mein khayal aata hai ki zindagi teri zulfon ki narm chhaav mein guzarne paati to shadab ho bhi sakti thi. ये रंज व गम की स्याही जो दिल पे छाई है तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी मगर ये हो न सका और अब ये आलम है कि तू नहीं तेरा गम तेरी जुस्तजू भी नहीं गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं न कोई राह न मंजिल न रोशनी का सुराग भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर मैं जानता हूं मेरी हम नफस मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है.